जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बारिश ने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं हमको, शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतर आत्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से। जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली, अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली,
हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो। तो कारंग बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नवरंग नयो रस ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, ये अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जेव ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुअत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज, हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुरुवंत कुरुवंत मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने त
ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है, ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा।

फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू, लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। ताजी तीरथ

बाबू, यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे विलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन

0: करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहाँ की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन, ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। यह मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरनते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या, है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है, अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी कर देती हूँ, कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने

0: लेता है एक्चुअली कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है उनसे हम रेज लेते हैं जो परम सत्ता है परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है जो पॉइंट ऑफ लाइट जो क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट तो उस लाइट से जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई अगर जैसे एक तो है चार्ज एक है हीलिंग आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का पावर का तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें इट्स यू ओनली डूइंग दिस भगवान तो हेल्प कर ही रहा है वो तो है ही है लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है
1: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है जो हमें आलस आता है जो हमें नींद आती है जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत

0: ज्यादा गुस्से में थी और गालियां दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षु जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरु जी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया, गुरु जी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियां देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा करके उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी। तो वहाँ से लेकर आए, सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
1: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं, और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीन्स जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक

0: आप थैंक्स करें, कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही, लेकिन वो सुधरने लगेगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
1: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं, तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना, वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, मंडे वाली सुबह को हमने कर लिया है खुशी खुशी पास और अब लेकर आ गई हूँ ट्यूसडे वाली सुबह, यानी कि एक दिन तो चलो इस वीक का निकल गया है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर से वीकेंड आ जाएगा। देखिए भाई, वीकेंड की तो ऐसी एक्साइटमेंट है ना कि जाता नहीं है उससे पहले हम उसे याद कर लेते हैं। देखिए आ जाएगा, लेकिन आज ट्यूसडे को रिकवर करना है, हमको मौका मिला है बहुत सारी चीजें करने का, वीकेंड अभी दूर है, लेकिन ट्यूसडे की मॉर्निंग को चलिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, और कुछ खास है आज मेरे पास, वो भी आपको बताऊंगी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो बने रहिए रेडियो महारानी पर। लेकिन उससे पहले फटाफट से गर्मा गर्म चाय की गर्मा गर्म सिप ले लो यार, क्योंकि चाय के साथ ना जो डोपामिन मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता, और यही डोपामिन मिलने वाला आपको रेडियो महारानी के शानदार से ट्रैक सुनने के बाद। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद।

हेलो हेलो जी, रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और देखिए भाई, बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ना ये जान लेते हैं कि आज अपने शहर का यानी कि आज फरीदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है। तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 32 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 24 डिग्री है और विंड स्पीड आपको 8 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। यानी कि आज भी दिन सनी सनी रहने वाला है, अच्छी खासी धूप है, अच्छी खासी गर्मी है। तो इस बदलते मौसम मेरा अपना ख्याल जरूर रखेगा, और पता है ना ख्याल रखने के लिए क्या करना है वो सारी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 minutes मिनिमम होना ही चाहिए रनिंग से पहले। उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें।

अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जी बिल्कुल, आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है। और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है। बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेन कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

हाँ जी, बहुत दिनों से सोच रहे हैं ना कि कहीं बाहर जाया जाए, खासकर इस फरीदाबाद से बाहर जाया जाए, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया ना यहाँ पर रहते हुए। तो चलिए फिर आपको थाईलैंड घुमा कर लाती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं ना एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए तो थाईलैंड कर रहे हैं ना आपका इंतजार, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना है, बिकॉज 15 सितंबर से इंडिया ट्रेवलर्स थाईलैंड में अप टू 30 डेज वीजा फ्री एंट्री कर सकेंगे। और बस इस एंट्री के लिए आपको करना क्या है, आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग रेडी होनी चाहिए, और साथ ही इमिग्रेशन के लिए 20,000 थाई बात होने चाहिए। दैट्स इट, इतना काफी है आपको एक थाईलैंड की परफेक्ट ट्रिप के लिए। सो अगर जाने का प्लान कर रहे हो ना, खुशखबरी आपके लिए है, अभी से बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। और ये जो हॉलीडेज है ना, इन हॉलीडेज को एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज भाई वीजा फ्री हॉलीडे है तो और क्या ही चाहिए। और इसके साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलते हैं कुछ ही देर में।

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या है, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान है आपकी, यानी कि सर्विस है आपकी। और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वहीं किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई आज ही जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आप

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

चलिए फिर फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की ना बात ही अलग है भाई। बिहार में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो फनी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सो मैं लेकर आ गई हूँ सोशल स्यापा, और आज का स्यापा देखकर ना आप भी यही बोलेंगे कि वाह क्या किस्मत है ना, किस्मत हो तो इस चोर जैसी। दरअसल हुआ क्या, सोशल मीडिया पर ना इन दोनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी करने गया एक इंसान, लेकिन वहां ना हॉस्पिटैलिटी लेकर आ गया। बिहार से एक ऐसा वीडियो आया है जहां ना एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ा गया पहले, लेकिन गाँव वालों ने ना उसकी पिटाई नहीं की, बल्कि उसकी पिटाई करने के बजाय ना उसे पहले बिठा कर ना वहां पर खाना खिलाया, और फिर जाकर कहीं उससे पूछताछ की कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप इस गाँव में चोरी करने के लिए आ गए। तो भाई देखो, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है ना, इंटरनेट पर लोगों ने इस मोमेंट को बहुत शेयर किया है और बहुत सारे रिएक्शंस भी दिए हैं। रिएक्शन देते हुए ना लोगों ने ये भी कहा, अतिथि देवो भवा। और ये तो अतिथि देवो भवा का ना नेक्स्ट लेवल था। सो किसी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, और लेकिन काम दूजा यहाँ पर तब भी नहीं हुआ, पहले पेट पूजा कराई गई और फिर बहुत ही प्यार से इन्हें जो है छोड़ दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जोक्स अपनी जगह, लेकिन अगर आप किसी गलत काम को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये स्टोरी जरूर याद रखिएगा, किसी को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सबक हमेशा वायलेंस से हो। आप अपनी बातों से भी किसी को ये बता सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। और इसी के साथ ही तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मैं सही हूँ जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन पता है ब्रेकअप के बाद जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है, वो दर्द जो दिल टूटने का होता है। क्या आपको पता था कि इमोशन का असर हमारे हार्ट पर भी बहुत गहरा पड़ता है। किसी ने कभी ना दिल टूटने को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। लोगों को लगता है क्या है, हील हो जाता है, मूव ऑन हो जाता है जिंदगी में। ना, मूव ऑन नहीं हो पाता। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिल टूट गया, लेकिन कभी कभी इंटेंस इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस का इम्पैक्ट सच में हमारे हार्ट पर पड़ सकता है। और ये जो कंडीशन में जिसकी बात कर रही हूँ ना, डॉक्टर ने इस कंडीशन का पूरा नाम बताया। दिल टूटने वाले इस कंडीशन को कहते हैं ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी। डॉक्टर जिसे आम भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस फील होता है, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, सडन शॉक या इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस, और जिसके बाद ना हार्ट की मसल टेम्परेरली वीक हो सकती है और सिंड्रोम हार्ट अटैक जैसे फील होने लगता है। लेकिन पता है हमें गुड न्यूज क्या है, दिल टूटने के बाद भी ना प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद आप रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा है किसी एक इंसान का हमारी जिंदगी से जाना हमारी खुद की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। इसलिए भाई आज का मैं टेक अवे लेकर आई हूँ, और आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप ये चीज आज यहाँ से लेकर जाएं। स्ट्रेस को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी होता है ना दिल टूटने के बाद, जैसे कि आपके दिल में दर्द, ब्रेथलेसनेस या फिर जितना भी अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट है ना, तो मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए। और हाँ यार, दिल को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके जिंदगी से चले गए उन्हें खुशी खुशी विदा कर दीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। अब वक्त है खुद से प्यार करने का, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। और आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ में टाइम पास करती है? यही गलत फहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस जिन आंटियों को हम इतना कोसा करते थे कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है। देखिए भाई, उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम के इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताती है कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हो। अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जद्दोजहद करनी है लाइफ में? इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए और हाँ अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, देखिए यार, अगर अंजलि आती है ना और अपने साथ नई अपडेट ना लेकर आए तो कैसे चलेगा। सुबह 7 बजे आई थी, बहुत सारी बातें की, लेकिन अपना टाइम हो गया ये बताने का कि आपके आसपास हो क्या रहा है। आखिर अभी तक ये सोचते थे ना कि हेलमेट लगाने की जरूरत ही क्या है अगर पीछे बैठे हैं। तो भाई देखिए, अब लगाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं या फिर अगर आप फरीदाबाद से जा रहे हैं ना यूपी के साइड। बेसिकली नोएडा ही जाते हैं हम लोग ज्यादातर। अगर नोएडा नहीं जा रहे हैं या फिर यूपी में कहीं भी जा रहे हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ना अगर आप स्कूटर के पीछे बैठे हैं, बाइक के पीछे बैठे हैं, स्कूटी के पीछे बैठे हैं, तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। और ये जो रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया है, यानी कि जो पीछे बैठे हुए पैसेंजर है अगर हेलमेट लगाते हो नहीं दिखाना तो आपको ई चालान भरना पड़ेगा। तो भाई देखिए, अगर चालान से बचना है ना तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगी कि हेलमेट जरूर कैरी करके जाइएगा। और यार आपको पता है, अगर आप हेलमेट लगाते ना तो वो आपके लिए अच्छा है। सपोज अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सर पर चोट ही नहीं आएगी, बच जाओगे ना। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगाओ, और अगर नहीं लगाया तो 1000 रुपए तक का जो चालान है वो आपको भरना पड़ेगा, और अगर चालान नहीं भरा तो आपके लाइसेंस पे एक्शन लिया जाएगा। तो भाई देखिए, पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर ये रूल आया है तो करना तो पड़ेगा फॉलो। और इसी के साथ सुनते रहिए ये ट्रैक, मिलता है थोड़ी देर पे।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा, सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार सोना किसे पसंद नहीं है, और अगर सोने के पैसे मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा। मैं यार गोल्ड की बात नहीं कर रही, पहले तो मैं आपको बता दूं वो सोना नहीं, नहीं भाई नहीं, ये हम तो जेन ज़ी है ना, हमें सिर्फ एक ही सोना समझ आता है। और इमेजिन कीजिए इतनी फुर्सत से सो रहे हैं कि अलार्म भी नहीं बज रहा, बॉस का कॉल भी नहीं आ रहा, सोने के ना पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी लाखों रुपए। तो भाई देखिए जापान में होने जा रहा है एक बेहद अनयूजुअल कॉम्पिटिशन, जिसमें कॉन्टेस्टेंट को ना बस बेड पर लेटकर 90 मिनट की बेस्ट पॉसिबल स्लीप लेनी है। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो कॉन्टेस्ट की स्लीप को ट्रैकिंग डिवाइस से मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कितनी जल्दी नींद आई, स्लीप कितनी डीप थी और कितनी क्वालिटी वाली थी, और साथ ही पूरे सेशन में स्लीप कितनी स्टेबल रही। तो भाई देखिए बीच में डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट किया जाएगा ताकि पता चले कि कौन डिस्टरबेंस की वजह से अपनी नींद खराब कर चुका है। यार अगर मैं इस कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट है, विनर को मिलेगा 2.22 मिलियन, यानी कि रफली अगर मैं बात करूँ तो 13-14 लाख ओनली। तो बहुत ही कमाल का कंपटीशन, और अगर इंडिया में इस तरह कंपटीशन कराया जाए ना, आई एम डैम श्योर इतने सारे विनर्स मिल जाएंगे। एक विनर तो हमारी आरजी पलक ही होने वाली है, बिकॉज आरजी पलक को इतनी ज्यादा नींद आती है, वो एक ऐसी लौती इंसान है जिसके ऊपर शायद कॉफी भी काम नहीं करती। तो आज ही मैं कंपटीशन पलक को बताने वाली हूँ, और बस मैं तो यही विश करूंगी कि इंडिया में भी ना इस तरह की कॉम्पिटिशन होने चाहिए, पता तो चले कि कौन कितना सो सकता है। और इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है थोड़ी देर में।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

यार कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया और ये स्कैम आया है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम के ट्रैप में फंस गया। और हुआ कि सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखे। किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.government.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

आसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसी को खुश करने के लिए ना उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन कभी कभी ना काइंडनेस के लिए बड़े जेस्चर नहीं, बस एक छोटा सा दिल चाहिए होता है। और आज मैं लेकर आ गई हूँ फील गुड स्टोरी स्टोरी, और ये गुड स्टोरी ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक छोटी बच्ची का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये जो छोटी सी बच्ची है अपनी सोसाइटी की बैल्कनी से हाइट पर काम करने वाले एक पेंटर को ना जाकर पानी और कुछ मिठाइयां देती है। अभी तो सबसे प्यारी चीज क्या थी, ये करने के लिए ना इसे किसी ने फोर्स नहीं किया, ये जेस्चर इस बच्ची के खुद का था। उसने बालकनी के बाहर एक पेंटर को काम करते हुए देखा, दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई, पानी का ग्लास लेकर आई, मिठाई लेकर आई और जाकर ना उस पेंटर को दे दिया। वो ये स्टोरी ना हमारे लिए एक रिमाइंडर लेकर आई है, काइंडनेस की कोई मिनिमम एज नहीं होती और ना ही कोई मिनिमम अमाउंट होता है, बस दिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आप सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाते, बड़े बड़े तोहफे उन्हें नहीं दे पाते, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन एक छोटा सा टेक्स्ट भी इनफ होता है किसी को स्पेशल फील कराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हाँ जिंदगी में काइंडनेस तो बाकी है। तो बस यार प्यार के साथ जियो और दूसरों को जीने दो, और साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो डस्टबिन में आप कूड़ा डाल रहे हैं ना, ये जो डस्टबिन में आप चीजें डाल रहे हैं, आपको पता है इन चीजों से ना कल जाकर बिल्डिंग मटेरियल भी बन सकता है। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर, इसीलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आती हूँ। तो भाई देखिए, जापान से टेक्नोलॉजी की एक ऐसी न्यूज सामने आई है ना, जिसे सुनने के बाद ना आप कहेंगे कचरे का भी इतना बड़ा काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि डिस्कार्डेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करके एक प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है, और प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले जितना भी फूड वेस्ट है कलेक्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाएगा, फिर पानी ऐड करके और उसमें थोड़ी हीट प्रेशर के साथ मोल्ड किया जाएगा, जैसे कि कुछ देर में आपको ईंटें मिल जाएंगी। और ये ईंटें बनी होंगी किससे भाई, आपके फूड वेस्ट से। यानी कभी आपने सोचा है जिस खाने को हम वेस्ट समझ रहे थे, कितने काम की चीज है यार। और अगर ऐसी ही चीजें रिसाइकल होती रही ना, तो एक दिन कुछ वेस्ट ही नहीं बचेगा, सब कुछ यूज्ड में आ जाएगा। इसी को फिर रीयूज रिसाइकल हम लोग कहेंगे, और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही सस्टेनेबल है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट को उसकी चीजें भी मिलेंगी, और फ्यूचर ना यार, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। देखिए जापान बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक दिन हम लोग भी कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जरूर, और हम लोग भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, लेकिन ये इनोवेशन ना कुछ हटके है। तो ऐसे इनोवेशन सुनने के लिए ना बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद।

0: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
0: रास रंगीलो दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली।

कभी सोचा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है? हाँ, इंसान की बात नहीं कर रही यार, स्टेट की बात कर रही हूँ यार। बिकॉज सोशल मीडिया पर ना इंडिया टॉप 10 हैप्पीएस्ट स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की रैंकिंग हो चुकी है और ये रैंकिंग ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, पहले ये बताइए, कभी आपने सोचा था कि आपका स्टेट भी इस रैंकिंग के अंदर आएगा? तो भाई नंबर वन आया हिमाचल प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है मिजोरम, थर्ड नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पर है पंजाब, फिफ्थ पर है गुजरात,

6 पर है सिक्किम, 7 पर है पोंडिचेरी, 8 पर है अरुणाचल प्रदेश, 9th पर है केरला और 10th पर है मेघालय। तो भाई ये बताइए, अगर आप इसमें से किसी एक स्टेट में रहते हैं तो पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, और अगर नहीं रहते ना तो कोशिश कीजिए आपका स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अंदर आ जाए, और अगर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ना सिर्फ ये था कि यार खुश रहना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी को जीना है, अदरवाइज तो जिंदगी हम सब काट ही रहे हैं। और यार ये जिंदगी अगर बिना खुशी के जीना तो कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। तो जिंदगी को और भी ज्यादा हसीन बनाने के लिए, और भी ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए ना खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दीजिए, और अगर खुशियाँ नहीं मिलती है तो खुशियाँ क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है थोड़ी देर में।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितिश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। रेगुलर रनिंग ओवरऑल बॉडी में सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी बेनिफिट के अलावा मसल्स, जॉइंट और आपके जो बोन्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि रनिंग एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: कहाँ है वो लोग जो छोटी लड़कियों को देखकर सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई ये तो किसी पोकेमोन से कम नहीं है, कहाँ है वो जिराफ जैसे लोग।
1: बिकॉज उन लोगों के लिए ना आज मैं इतनी बढ़िया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ ना, जिसे सुनने के बाद ना भाई साहब आपको आपके लंबे होने पर अफसोस होगा। और आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है ये स्टोरी बताते हुए, क्योंकि यार अभी तक ना आपने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है। जिस दिन आप मुझे देखेंगे ना तो आपको शायद यही लगेगा कि मैं अभी बिना 11th 12th क्लास की एक बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है। और कम हाइट होने का मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, नहीं। तो भाई देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जो नहीं करते हैं ना यार, अपने आप से प्यार करो। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज हैं जो मुझे सुन रही है, जरा से वॉल्यूम तेज कर लो, क्योंकि यार इंटरनेट पर ना इन दिनों आपके फेवर में इंटरेस्टिंग क्लेम वायरल हो रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी शॉर्ट गर्ल है टॉल गर्ल के कंपैरिजन में स्वीटर, स्मार्टर और ज्यादा केयरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है ही नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इस छोटे से पैकेट में ना बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है और बहुत सारा फन भी है। सो जितने भी अभी तक बड़े लोग ये अपनी हाइट पर इथाते थे ना यार, किसी काम की नहीं है आपकी हाइट, क्योंकि अगर आपको किसी से बचना होता है ना तो आपकी हाइट इतनी बड़ी है कहीं छुप नहीं सकते आप लोग। लेकिन हम जो छोटे हाइट वाले लोग है ना यार, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की स्टोरी मुझ जैसे छोटे लोगों के लिए थी, यानी कि जो हाइट में छोटे हैं। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज आज मुझे सुन रही थी ना, फाइनली ये स्टोरी हम लोगों के लिए आ गई है। तो अब फ्लेक्स करना तो बनता है ना। तो आपके जितने भी लंबू फ्रेंड्स है ना, बस आज वाली स्टोरी ना इन्हें सुना दीजिएगा और इन्हें बताइएगा कि बेटा आपकी जो लंबी हाइट है ना सिर्फ दिखाने के लिए ही है, इसका काम कुछ नहीं है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है कुछ ही देर में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

हाँ जी, गाने भी सुना दिए, बेहतरीन बातें भी कर ली, बहुत ज्यादा हसीन। अब टाइम हो गया है मेरा आपको टाटा बाय बाय कहने का। अंजलि ऑन एयर लेकर आई थी सुबह 7 बजे, अब 11 बजने वाले हैं बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के बाद। अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती थी कि आज मेरे टिफिन में क्या है। यार आज मेरे टिफिन में ना भिंडी आई है और मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरी मम्मी को ये भी पता है कि जो मेरी बेटी है ना, ये बाहर का खाना नहीं खाती। अगर मैं इसे भिंडी भी दूंगी ना, ये बेचारी भिंडी भी खा लेगी। तो देखिए, आज मुझे तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे लंच को लेकर। अगर आप में से किसी को भिंडी पसंद है ना, तो मुझे जरूर बताएगा। और बताने के लिए ना आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर ना मुझे ये जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम वही खाना लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी की पसंद यार अच्छी नहीं है खाने के मामले में। और इसी के साथ चलिए अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी बहुत सारी बातों के साथ। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर हमारे शोज को। अब बने रहिए स्टेशन पे, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक सिंपल सी लाइन मैंने कहीं रीड करी थी जिसके साथ आज शो की शुरुआत हम करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। एम्पावर दी वुमेन, एम्पावर दी वर्ल्ड, ये एक सिंपल सी लाइन सुनने में है, बट इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो एक अलग फीलिंग आने वाली है। एम्पावर दी वुमेन मतलब अगर आप एक वुमेन को एम्पावरफुल बना देते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि वो सशक्त हो, अपने काम करने के लिए खुद आगे बढ़ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट एक वुमेन आप बना देते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर देते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ इनहेंस कर दे सकते हैं। ये पावर होती है एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए आप एक बदलाव लाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में और आपके स्टेट में आ रहा इधर हर जगह एक चेंज, एक रेवोल्यूशन आने की शुरुआत हो चुकी है, अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को आगे बढ़ाने की सोच भी रख ली है दिमाग में। यू विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बाद में आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही हैं, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि, और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

She have changed the world or she have explored the world for upcoming girls. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अक्सर ये होता है ना, एक वुमेन एक नई फील्ड एक्सप्लोर करती है और उसके बाद बहुत सारी वुमेन उसे देख के उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी वुमेन है उन्होंने करके दिखाया था, जो आज हमारे साथ शी हैव चेंज द वर्ल्ड में है। मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी मैम की। कभी पुलिस की जो वर्दी है ना, वो सिर्फ पुरुषों का या पुरुषों का ही सिंबल माना जाता था या उनकी ही वैकेंसी वहां पर आती थी। फिर आई किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। 1972 में उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद इससे पहले भारत में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अपनी ईमानदारी, डिसिप्लिन और निडर अंदाज से उन्होंने पुलिस को सर्व किया और एक नई पहचान बना ली। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके जेल सुधारने तक उनके कई फैसलों ने सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव ला दिए। और किरण बेदी सिर्फ एक कानून की रक्षक नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं का वो विश्वास है, वो हिम्मत है और वो मेहनत करते रहने के पीछे की मिसाल है। और ये कहानी उन सभी लेडीज को मोटिवेट करती है जो सोचती हैं कि इस फील्ड में वुमेन जाके क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर पाएगी। तो किरण बेदी ने कहा है, कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, यानी नारी नहीं कर सकती। नारी ठान ले तो नारी सब कर सकती है, इसीलिए वो है नारी नंबर 1। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

बाबू वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक बिहारी सौ पे भारी, पर ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई मेरे को लग रहा है अपने प्लानिंग में। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की उस महिला की जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैडम ये क्या हरकत थी और क्या जरूरत थी आपको ये चीज करने की? आपको मालूम है बिहार एक ड्राई स्टेट है जहां पर लीगली आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर बैन करी जा चुकी है और बहुत सालों से बैन है। तो ये क्या तरीका था, फर्स्ट क्लास एसी की आपने ट्रेन कराई, टिकट कराई, उसके बाद उसमें आप दो दो अटैचियां भर के लेके जा रही है, वहां शक हो गई पुलिस को कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु, इनकी जो ड्रेस है वो तो मैच कर रही है बट जो इनका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी, उनको रोका, तो बैग खोला तो बैग के अंदर से एक बोतल, दो बोतल, क्या हजारों बोतलें निकल गई भैया। ये क्या क्या करने के मूड से आप लेके जा रही, ब्लैक में सप्लाई करने के मूड में लेके जा रही थी या खुद इतना कंज्यूम करना चाह रही थी, ये नहीं समझ आ रहा। बट वहां जो आप एटीट्यूड से खड़ी हैं वीडियो में, पकड़ने के बाद भी फोन मिला रही है कि रुको अभी कोई छुड़वा देगा, तो मैडम पुलिस है वो, और आपको इलीगल चीज करते हुए पकड़ा गया है जो बिहार के अंदर एटलीस्ट लीगल नहीं है, बाकी स्टेट में लीगल होगी। और ऐसे केस बिहार से क्यों आते हैं जब वहां पर बैन है, तो बिहार वालों को ऐसा क्या है भाई, बिहार के बाहर जाओ अगर कुछ आपको ऐसा कंज्यूम भी करना है तो, उस स्टेट के अंदर ले जाने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो। इससे पहले भी बहुत बार पकड़े गए, फिर से पकड़े गए, आगे की कहानी भी नहीं पता फिर कब पकड़ी जाए। बट ये जो एक फीमेल के थ्रू पकड़े गए ये मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग था यार। मेल तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो ब्लैक कर रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, बट फीमेल, माना इक्वालिटी भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना, बट ऐसे भी नहीं मिला के चलना है यार कि इन चीजों में आप बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: पे आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

आज मैं एक ऐसे लीगल राइट की बात वुमेन्स की करने वाला हूँ जो शायद मुझे ही आज से पहले नहीं पता थी, ये मुझे आज पहली बार पता चली है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब इसका मतलब क्या है? मुफ्त कानून मदद का अधिकार। अब आप सोच रहे हो ना, मुफ्त कानून मदद का अधिकार, ये सब क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक भारत में रहने वाली महिला हैं और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, वकील की फीस देने का पैसा नहीं है, कोर्ट के खर्चे उठाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास ये राइट यूज करने का अधिकार है, जो राइट बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, जिसके तहत ये कहा जाता है अगर आपके पास अपने वकील को देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट या लीगल चीजों के लिए पैसा नहीं है तो आप यूज कर सकती हैं फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी एक लीगल केस को लड़ने के लिए या उसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ये राइट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। कोर्ट फीस में और कुछ नए कानून जो खर्चे हैं उनमें आपकी मदद की जाएगी, पूरी तरह से फ्री नहीं है बट आपकी हेल्प की जाएगी, कितना कम से कम में वो चीज आपका करवाया जा सकता है। तो ये राइट सिर्फ एक महिला के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA, अदरवाइज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA के अंदर आती है। आप वहां पर जाके मदद मांग सकते हैं ऐसे किसी केस में जब आप सक्षम नहीं है कोर्ट फीस भरने के या फिर अपने किसी भी वकील की फीस भरने में, तब ही आप मदद ले सकते हैं। पहले आपको वो प्रूफ करना होगा कि आप सक्षम नहीं है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2020

ये बात हम कभी नोटिस ही नहीं करते है ना, और इस साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है मर्द के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। आखिर चाहिए क्या एक मर्द को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए, उसे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना उसे महंगे गिफ्ट चाहिए, ना उसे शायद आपसे बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए। हो सके तो बस उसको इतना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसे बोले ना तुम मर्द हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तो आप बस उसके कंधे पे हाथ रख के आराम से उससे ये पूछे, आज थक गए होगे, कोई बात तो नहीं, बताओ अगर कुछ बताना चाह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और अगर वो पलट के आपको बता दे तो वही आपकी पॉजिटिव जीत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो शायद बाहर दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, बट उसने आपको चुना है वो शेयर करने के लिए, तो आप उसकी लाइफ का वो खास पार्ट हो। और अगर आप भी नहीं पूछ रहे हो तो शायद वो किसी को वो बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक मर्द को क्या चाहिए, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसे बता सके, और वो खुद से आगे नहीं बताएगा तो प्यार से पूछने वाला इंसान सबसे पहला उसको चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, तो 27 तारीख को आप आ रहे हो ना सूरज कुंड मेला ग्राउंड में? अरे अभी तक प्लान नहीं बनाया? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और प्लान नहीं बनाया तो भैया अब बना लो, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 27 तारीख को होने वाली है। सूरज कुंड मेला ग्राउंड से ये बिगिन होगी और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले तो यही बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी कर लो www.halfmarathon.in पे जाके। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, इट्स आरजे तुषार के नाम से, वहां आके पूछ लेना। और ये जो मैराथन है ये 3 फेज में होने वाली है। एक होने वाली है 21.1 किलोमीटर, फिर होने वाली है 10 किलोमीटर, फिर होने वाली है 5 किलोमीटर। तो ये 3 तरह की होने वाली है, आप जिसमें बेस्ट आपको लग रहा है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर वाली फन रन होने वाली है जो आपके लिए बहुत हैक्टिक नहीं होने वाली है। और सारे जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मैच करने वाली है, एक प्रोफेशनल लेवल मैच करने वाली है जिसमें टाइम वगैरह सब वैसे ही नोट करा जाएगा। प्लस प्राइज मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस रेस का होने वाला है। और इसके पीछे का थीम ही है ना, एक हेल्थ के लिए आपके कदम उठाने का टाइम आ चुका है। और नशा मुक्त हरियाणा जो मेन मोटिव है इस पूरी मैराथन का, वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। तो 27 तारीख इस मैराथन का पार्ट बनना 1% भी ना भूलिए, हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से बिगिन हो जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? अच्छा, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह से काम करते करते अचानक दिमाग बोलता है कि बस भाई अब थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है, और वैसे भी आफ्टरनून का टाइम ही ऐसा है कि लंच हो चुका है, काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन मूड को थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी गॉसिप और थोड़ी फिल्मी बातें चाहिए होती हैं। तो बस इसी मूड को मेंटेन करते हुए अगले 2 घंटे हम करेंगे फुल ऑन फिल्मी कैचअप, मूवी, स्टार्स, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की वो सारी बातें जो आपके मूड को एकदम फ्रेश कर दें। तो मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर। लेकिन बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: फरीदाबाद के इंचो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी,

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और दृश्यम 3 की बात हो ही रही है तो अब देखते हैं कि थिएटर में ऑडियंस का रिस्पॉन्स है टिकट विंडो पर कैसा दिख रहा है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय देवगन और जयदीप बलावर स्टार है दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग से ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया था और अब फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और मंडे को फिल्म ने ग्लोबली अराउंड 30.20 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका फोर्थ डे वर्ल्ड वाइड टोटल पहुंच गया है अराउंड 303 करोड़। बाप रे, ओवरसीज में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक फिल्म ने 4 दिन में ओवरसीज मार्केट से अराउंड 60 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं। मतलब विजय सालगांवकर का गेम स्क्रीन पर जितना सस्पेंसफुल है, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जर्नी उतनी ही फास्ट निकली भाई। अब देखना ये है कि दृश्यम 3 की ये रेस आगे कितनी दूर तक जाती है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

थिएटर्स के बाद थोड़ा OTT का मूड हो तो एक फ्रेश रिकमेंडेशन नोट कर लीजिए। दोपहिया 2/1 अक्टूबर को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है और आते ही सीरीज ने ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना ली है। पहले सीजन की कॉमेडी और धड़कपुर गांव की क्विर्की दुनिया अगर आपको पसंद आई थी तो सेकंड सीजन में भी वही देसी ह्यूमर और एंटरटेनमेंट कंटिन्यू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 एपिसोड्स की दोपहिया 2 फिलहाल प्राइम वीडियो पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। गजराज राव, स्पर्श, भुवन अरोड़ा, शिवांगी जोशी और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स एक बार फिर कास्ट का पार्ट है और IMDb पर भी सीरीज को 10 में से 8.6 की रेटिंग मिल रही है। मतलब अगर वीकेंड के बाद आप सोच रहे हैं कि कुछ लाइट और एंटरटेनिंग देखते हैं तो दोपहिया 2 को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी एंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।
1: What's up, dog?
2: Shit, brother, shooting in the wind. What's good with it?
1: Watch out, man. Watch out. DLG coming, man.
2: Oh, word? They say he the GOAT. He all the way down here.
1: Yeah, dog. He killing the game.
2: Oh, DLG. Watch out. Watch out.

0: 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: रब्बात एक ऐसी फिल्म की जिसका पोस्टर देखकर ही लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब्बास मस्तान की न्यू थ्रिलर थ्री मंकीज अनाउंस हो गई है और नाम सुनते ही याद आते हैं वो थ्री वाइज मंकीज, जिनका कहना है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन फिल्म में इनका मंत्र थोड़ा अपडेट हो गया है। अब इनका कहना है कि सब देखो, अपनी सुनो, बेखौफ बोलो। फिल्म में विशाल जेठवा, मुस्तफा और तेंजिन नजर आएंगे अमर अकबर और एंथोनी के रोल्स में। मोशन पोस्टर में तीनों मास्क्ड लुक में किसी डेंजरस काम की तरफ जाते दिख रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल केयर फ्री दिख रहा है। और अब्बास मस्तान की फिल्म है तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन पर दिख रहा है जरूरी नहीं वही पूरी कहानी हो। अर्जुन रामपाल भी फिल्म का पार्ट है और उनका करेक्टर संजय है। और स्टोरी को भी अभी सीक्रेट रखा गया है, बस इतना कंफर्म है कि ये थ्रिलर 4 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आएगी। तो अमर अकबर और एंथोनी इस बार कॉमेडी नहीं बल्कि कुछ बड़ा खेल खेलने आ रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी कोई पुराना गाना अचानक से बज जाए ना, तो पता नहीं क्यों हम प्रेजेंट में होके भी सीधा पुरानी मेमोरीज में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, 1997 की फिल्म कोयला का। माधुरी दीक्षित स्क्रीन पर और पीछे से अलका याग्निक की आवाज, बस फिर और क्या चाहिए भाई। इस गाने में माधुरी का करेक्टर गौरी, शाहरुख के करेक्टर शंकर के प्यार में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में शंकर एक ऐसा करेक्टर है जो बोल ही नहीं सकता, तो ये गाना उस खामोश मोहब्बत को और भी खूबसूरत बना देता है। अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की आवाज, लिरिक्स इंदीवर के और म्यूजिक राजेश रोशन का, मतलब 90s का प्रॉपर म्यूजिकल पैकेज है भाई इस गाने में। और कोयला की स्टोरी भी सिंपल लव स्टोरी नहीं थी, गौरी एक जबरदस्ती के रिश्ते में फंस जाती है और शंकर उनकी हेल्प करता है, और फिर दोनों के सामने शुरू होता है एक डेंजरस एस्केप। लेकिन ऑनेस्टली ये गाना आज भी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुआ है। और इसी के साथ अब मैंने गानों की बात कर ही दी है और वक्त भी गाने का हो गया है, तो एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ

0: फ्लेवर।
1: अभी तक हम 90s के गाने और फिल्मी स्टोरीज में खोए हुए थे, लेकिन अब एक सीरियस अपडेट भी है भाई, जो मुंबई की फिल्म सिटी से आ रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मच अवेटेड फिल्म रामायणा के टेम्परेरी सेट पर मंडे को आग लग गई और वीडियो सामने आते ही ऑब्वियसली फैंस के बीच भी कंसर्न बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फायर फिल्म सिटी में एक टेम्परेरी सेट के PCR में लगी थी। वायरिंग, केबल्स, वुडन मटेरियल, AC यूनिट और शूटिंग इक्विपमेंट तक इसका असर हुआ है। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि फायर को लगभग 1 घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया गया और किसी के इंजर्ड होने की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, पास में शूट हो रहे पति पत्नी और पंगा 2 और MTV हसल 5 के सेट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि लोकेशंस नियर बाय थी। अभी डैमेज को लेकर कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन थैंकफुली किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं लौटूंगी मैं हूँ पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: फ्लेवर।
1: और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, रजनीकांत का स्वैग। जी हाँ, जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और टाइगर मुथुवेल पांड्यन एक बार फिर फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं। ट्रेलर में रजनीकांत का वही सिग्नेचर स्टाइल, एटीट्यूड और एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब स्क्रीन पर एंट्री हो और मास मोमेंट ना मरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन इस बार एक और चीज ने सबका अटेंशन खींच लिया है, वो है विद्या बालन। विद्या फिल्म में कांता के रोल में नजर आ रही हैं और उनका लुक एकदम डिफरेंट है। शॉर्ट हेयर, डार्क स्टाइलिंग और एक मिस्टीरियस सी वाइब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजनीकांत और विद्या बालन पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों के कैरेक्टर्स का कनेक्शन क्या है और विद्या का कैरेक्टर स्टोरी में क्या ट्विस्ट लेकर आएगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। और ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में आ रही है। तो टाइगर मुथुवेल पांड्यन के स्वैग के साथ साथ विद्या बालन का ये नया अवतार कॉम्बो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना भाई। तो अब बस देखना ये है कि ये मूवी कितना धमाल मचाएगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, इसी के साथ वक्त हो चुका है आज के फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। आज कभी पुराने गाने याद किए, कभी न्यू फिल्म्स की बातें हुई और बीच बीच में थोड़ी गॉसिप भी हो गई। और इसी के साथ अब मुझे लेनी पड़ेगी आप सभी से इजाजत। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। कल फिर मिलूंगी इसी जगह इसी फिल्मी मूड के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोई भी केयर नहीं करता, आपसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है, या फिर इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो एक दिन स्कूटी का स्टैंड लगा के स्कूटी चला लो। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड जो मैंने अभी बात बोली ये रियल है। आप एक काम करो, स्कूटी चलाना या बाइक चलाना, और उसमें ना स्टैंड हटाना मत। आजकल वैसे बाइक सारी जिसमें बिना स्टैंड हटाए तो स्टार्ट होती नहीं है, बट फिर भी ट्राई करना एक बार, और फिर आपको पता चलेगा कि लोग कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आज मैं बस बाय चांस ऐसी किसी की स्कूटी ले आया, उनकी स्कूटी का स्टैंड टूटा पड़ा था, मुझे पता नहीं था। एंड रास्ते में मुझे कम से कम बता रहा हूँ 20 लोगों ने बोला, भैया आपकी गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ है, भैया आपकी स्कूटी का स्टैंड लगा हुआ है। एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों से ना अब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे दोस्त भी होते हैं, वो भी हेल्प करने को तैयार नहीं होते, और यहाँ पर तो अजनबी लोग भी आके हम लोगों को बोल रहे हैं कि भैया आपकी स्कूटी का स्टैंड लगा हुआ है। पहले बंदे ने आके जब बोला ना स्टैंड, तो मुझे लगा क्यों खड़े होने के लिए क्यों बोल रहे हैं, फिर मुझे ध्यान आया शायद साइड स्टैंड खुला हुआ होगा, फिर पता चला कि साइड स्टैंड तो टूट ही गया है। तो ये सब चीज़ें आजकल आम हो चुकी हैं, तो इंसानियत अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, इंसानियत अभी ज़िंदा है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 9.6 पर आरजे गौरव भी अभी आ गया है अगले 4 घंटों के लिए। हम लोग बातें करने वाले हैं, मस्ती होने वाली है, और फरीदाबाद के बारे में अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? रेडियो महारानी का इंस्टा हैंडल है, उधर आइए, उधर बात कर सकते हैं। रेडियो महारानी का एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी कॉलिंग नंबर सेम है, 9654896896। इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। फिर से रिपीट कर देता हूँ नंबर, 9654896896। और एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि भरी दोपहरी या फिर किसी भी दिन आप कुछ खाए, आपने मान लेते छोले भटूरे खाए, ऊपर से लस्सी पी ली, फिर उसके बाद आपको काम करना है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उस टाइम आपको नींद आने लग जाए, तो आप लोग क्या करोगे? क्योंकि अभी मैं यही कर रहा हूँ, मैंने छोले भटूरे खाए अभी से थोड़ी देर पहले, और अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बट नहीं, नींद भगाने का एक और तरीका है, वो है गाने। तो आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, रेडियो महारानी सुनते जाइए। गौरव हूँ मैं आप सभी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

आजकल आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है, अब कोई बचेगा नहीं, कुछ खाने को नहीं बचेगा, आप लोग बहुत ज्यादा तरसने वाले हो, बस आने दो उस टाइम को। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। अब लोग का काम है बोलना, वो बोलते हैं ना हम लोग, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कह ही रहे हैं कि बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। और अभी रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी न्यूयॉर्क में एक स्पीच के दौरान बोल दिया कि दुनिया में आने वाले महीनों में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आ सकता है। और ये बात उन्होंने ऐसी हवा में नहीं बोली है, एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो, फूड और

फर्टिलाइजर की क्राइसिस हो रही है। सबको पता है मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, यूक्रेन में और रशिया में भी चल रहा है, तो इसकी वजह से जो ग्रेन एक्सपोर्टर्स है ना वो ब्लैक सी के रास्ते से अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से भी दिक्कतें आ रही है और बोला जा रहा है कि इस बार फसलों की पैदावार कम होगी, जिससे 2027 तक खाने पीने की चीज़ें और महंगी हो सकती है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, सुपर एल नीनो, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ, तो सुपर एल नीनो ये काफ़ी बार एक सूखा ला देता है, ड्रॉट जिसे हम लोग कहते हैं, अकाल पड़ गया तो वैसे टाइप का कर सकता है ये। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम लोग बात करें तो देशों पर बढ़ता कर्जा, ग्लोबल डेट जो कि बढ़ता जा रहा है, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर हर देश कर्जे में डूब रहा है तो कर्जा दे कौन रहा है? क्योंकि ये सवाल जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, देखो जब कर्जा बढ़ता है तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा रिस्क वाली जगहों से हटाकर सेफ जगह पर रख देते हैं, जैसे अमेरिका या फिर गोल्ड में रख देते हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे दबाव पड़ जाता है। इसके अलावा एआई बबल का भी डर है, लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक कंपनीज कुछ ज़्यादा स्पेकुलेशंस पर चल रही है और आगे जाके क्रैश हो सकता है। इसके अलावा फ्यूल और इन्फ्लेशन, तो देखो कच्चा तेल अगर महंगा होगा तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ने का डर है। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। तो देखो पूरी दुनिया और आमतौर पर गरीब देशों के लिए ये एक वार्निंग मानी गई है, क्योंकि देखो इंडिया के पास अपना काफ़ी अनाज का स्टॉक है ऑलरेडी और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी मजबूत है। सबको पता है हम लोग बहुत बढ़िया अनाज उगाते हैं, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें महंगी होने से थोड़ा सा असर तो यहाँ पर भी पड़ेगा, लेकिन इंडिया में खाने की कोई सीधी कमी नहीं आने वाली है। ये चीज़ मैंने रिसर्च करके बताई आप लोगों को, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो और ऑनलाइन आने वाली वीडियोस पर आंख बंद करके बिलीव मत करना। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाना, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी कि देश भर में या फिर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, फूड क्राइसिस आ सकते हैं, बट इसका असर इंडिया पे नहीं पड़ने वाला। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो बोल रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होगा, क्या हो सकता है? इंडिया के पास बहुत पैसा है, आपको लगता है कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, उसमें पूरा इंडिया तो नहीं बोलूँगा, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली NCR घूमने निकला पड़ा था, सबके पास पैसा है। फिर उसके अलावा आईफोन 18 जैसी लॉन्च हुआ तब इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी दुकानों पे, तो मतलब पैसा तो है ना। और तीसरी चीज़, अभी रिसेंटली गुरुग्राम में लॉन्च होते ही बिक गया पूरा का पूरा रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, लग्जरी रिटायरमेंट प्रोजेक्ट था सेक्टर 63 में, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया था, द ओरेवा नाम से। इसमें 4.17 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ, ये 172 अपार्टमेंट्स लॉन्च होते ही बिक गए हैं, जिसकी टोटल लागत बताई जा रही है 1985 करोड़। सोचो 1985 करोड़ रुपीज़ में बिका। और अगर एक अपार्टमेंट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ का बिका है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं। इसमें ये सबसे छोटा वाला साइज़ वाला होगा, क्योंकि बड़े वाले साइज़ वाले अपार्टमेंट्स भी बहुत तेज़ी से बिके हैं, और ये DRF का प्रोजेक्ट है। तो इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद ना ऐसा लगता नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया का कुछ बिगाड़ पाएंगे। वैसे बहुत सारी और भी चीज़ें, लोगों की अपनी अपनी राय होती है इस पर, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए चला रहा हूँ ये गाना, सुनिए इस गाने को, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? बहुत देर से बातें कर रहे हैं हम लोग। फरीदाबाद अभी हम लोग कहीं पर भी जाएं, ग्रीन फील्ड जाओ, वहाँ देखो वहाँ पर पंडाल लगने शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर आप नहर पार जाते हैं, काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पर पंडाल लगने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा सब जगह पूरे फरीदाबाद में मैं बोलूँगा पंडाल लगने शुरू हो चुके हैं, फेस्टिव सीजन वाली वाइब्स आनी शुरू हो चुकी है, रामलीला के लिए भी मैदान सजने लग चुके हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो फरीदाबाद में रहती है वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हाउसेज में रामलीला शुरू कर रहे हैं। मतलब 11 तारीख से बोला जा रहा है कि रामलीला शुरू हो जाएगी। बट उसके अलावा, इसके अलावा क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में फूड आइटम्स आ चुके हैं नए, और गिफ्टिंग आइटम्स नए नए आ चुके हैं। लोग जोर शोर पर तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि ये वाला साल थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन जो बिक्री होने वाली है उसमें बोला जा रहा है कि कम से कम 40,000 करोड़ रुपये का सामान बिकने वाला है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। ऑफलाइन तो अलग बात है, क्योंकि देखो अभी भी लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर मुझे किसी के लिए कुछ खरीदना होगा तो मैं मार्केट में जाके खरीदूंगा, क्योंकि ऑनलाइन कितने दिन में आएगा और क्या क्वालिटी आएगी मुझे कुछ नहीं पता। अपने सामने से देख के तो मैं एटलीस्ट कंफर्म कर सकता हूँ ना कि मैं क्या गिफ्ट देने जा रहा हूँ किसी और इंसान को। तो मार्केट में अभी दुर्गा पूजा की भी खुशबू है, रामलीला की भी खुशबू है, और दशहरा आने वाला है उसकी भी खुशबू है। और आपको लग रहा होगा बहुत लेट है अभी दशहरा आने में, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 14 दिन बचे। आज है 6 तारीख, और ऐसे ही करते करते ये 14 दिन भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। नवरात्रे आने वाले हैं और सब लोग फास्टिंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। चलो बढ़िया फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए चला रहा हूँ ये गाना, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैट्रिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना सुनना,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता।

जा रहे हैं लोग। और इसी के साथ साथ बड़खल झील में पानी आ चुका है, बड़खल झील में पानी आया, बट ऊपर से जलकुंभी तैर रही है। मगर यहाँ पर एक चीज है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। बड़खल झील एक हरियाणा टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली झील। और डू यू नो बड़खल झील कब स्थापित हुई थी, पता आपको? मतलब एक्चुअली में क्या हुआ था, एक्चुअली में ये बहुत सालों पहले एक डैम के रूप में तैयार की गई थी ताकि इरिगेशन हो सके और किसानों को पानी मिल सके, और फिर उसके बाद इसको टूरिज्म की तरह चालू कर दिया गया। बट ऐसे ही ढेर सारी झील और भी बन गई हमारे फरीदाबाद के अंदर, जैसे कि एक सिरोही झील है जिसमें अभी रिसेंटली एक लड़के की डूबने से मृत्यु हो जाती है। और ये बात मैं आज इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो अभी कॉलेज में गए हैं या फिर जो स्कूल में हैं, उन लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, कि क्यूरियोसिटी रहती है अगर मैं सही शब्द बोलूँ, तो वो लोग जाने को तैयार है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी झील पर जाएँ, वहाँ जाके फ़ोटोज़ खिंचवाएँ। मत जाइए प्लीज़, वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। पहली चीज़, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको तैरना आता भी है तो भी आपको उधर नहीं जाना है क्योंकि आपको नहीं पता वो झील कितनी गहरी है। पहली बात कर ली मैंने सिरोही झील की, एंड दूसरी है डेथ वैली। डेथ वैली जो सूरजकुंड रोड पर है, जिसको डेथ वैली कहते हैं वैसे तो, बट वहाँ

सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पेरेंट मुझे सुन रहा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें कि ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं है, और क्यों नहीं जाना है वो भी आप लोग उनको बताइए। और इसी के साथ साथ आप उनको ये बोल सकते हैं कि वो फरीदाबाद में काफ़ी सारी और भी झीलें उसमें जा सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा सोचिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, और अब हम आप सभी के साथ बातें और गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जहां पर आपके बॉस या फिर आपसे जो सीनियर है वो आपको बोल रहे हैं बेटा कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर ये बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी अब आपके हाथ से जा चुकी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ है। और सपने में काफ़ी बार हमारी नौकरी चली जाती है, और उसके मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है कि नौकरी छूटना या फिर आप उसको निकाल दिया गया है। तो इसका सिंपल सा एक संकेत है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट

और एक इशारा करता है कि आप अपनी जो जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है ना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप चाहते हो कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए, तो रियलिटी में भी शायद ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बार ना साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे कि आपके मन में तनाव है, आप स्ट्रेस में हो और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें आपको नौकरी जाते हुए दिख रही है, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आज छूट चुकी है, आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया है, और हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, क्योंकि ऐसे सपने ये दिखाता है कि हमारे अंदर घबराहट है, खुद को लेकर इनसिक्योर हैं हम लोग, या फिर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो अपने सपने शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, नंबर है मेरा 9654896896। आप सुन रहे रेडियो महारानी, मैं हूँ गौरव।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

विजय और उसकी फैमिली पणजी गई थी, वहां पर गुरु जी का सत्संग अटेंड किया था, वहां पाव भाजी खाई थी, और ये सवाल अभी तक मन में है कि कौन निर्दोष है। आज गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। दृश्यम 3 की मैं बात कर रहा हूँ, और दृश्यम 3 ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और मैं तो ये बोलूंगा, देखो उस दिन पूरा दिल्ली एनसीआर भले ही घूमने गया हो, बट उस दिन बहुत कुछ और भी हुआ है। जैसे कि सिंघम मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ओपनिंग डे रिकॉर्ड सिंघम अगेन का मैं बोलूंगा वो करा है दृश्यम 3 ने, और अजय देवगन की फिल्म है दोनों की दोनों वैसे तो, बट दृश्यम 3 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाई है। अजय देवगन को उनकी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाई है। पहले ही दिन 66.75 करोड़ नेट कमाई हुई है, तो इससे सिंघम अगेन का रिकॉर्ड तो टूट गया, और साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर भी बनी। अब देखो ये फिल्म ना मैं बहुत टाइम से देखना चाह रहा था, बट मैं अभी तक देख ही नहीं पाया हूँ। कोई है जो मेरे साथ ये मूवी देखने चल सके? खर्चा आप लोगों का होगा, मैं सिर्फ साथ देने चलूँगा। खैर बता दूँ आप लोगों को, इस फिल्म में रिलीज़ के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है, और मुझे लगता है 400 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत इजीली पार हो जाएगा। और उसके बाद एक सवाल जो मन में था कि विजय पकड़ा जाएगा या फिर नहीं पकड़ा जाएगा, वो तो इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। और जितनी भी रील्स आ रही है ना विजय सालगांवकर को लेकर या फिर दृश्यम 3 को लेकर, मैं उनको ऐसे स्किप कर रहा हूँ जैसे कि मुझे मूवी देखने अभी के अभी जाना है, क्योंकि मैं देखने तो ज़रूर जाऊँगा, अब ये तो वक्त बताएगा कि मैं कब जाने वाला हूँ दृश्यम 3 देखने के लिए। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने चलते रहेंगे, और इसी के बीच आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप भी उनमें से हैं जो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो टीवी चलाते हैं फिर उसके बाद मूवी चलाने के बाद बीच बीच में उठ के चले जाते हैं, या फिर आपको भी कई घंटों तक बिंज वॉच करने की आदत पड़ चुकी है जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा खराब है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है कि लोग कई कई घंटों तक टीवी देख रहे हैं लेट के, या फिर ओटीटी चैनल चला रहे हैं, ओटीटी नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रहे हैं, तो इससे आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेचुरल साइकिल बिगड़ सकती है आपकी, स्लीप साइकिल। इसके अलावा देखो क्या होता है, जब हम लोग बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं, हम लोग कुछ खाने के लिए ले आते हैं अपने पास, हम खाते रहते हैं बेवजह, भूख नहीं लग रही बस हम लोग चल रहे हैं उस चीज़ को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अक्सर लोग जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं, जिससे कैलोरी और वज़न ही बढ़ता है, बाकी कुछ होना हो। और बता दूँ आपको, जब हम लोग बिंज वॉच करते हैं ना, तो हम लोग एक ऐसे पोजिशन में देखते हैं मूवीज़ जिसमें हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, पैर ऊपर सर नीचे सोफे पे लेटे हुए हैं, ऐसी टाइप की मूवीज़ तो देखते हैं, और इससे क्या होएगा, इससे पोस्चर ख़राब होता है, और उसके अलावा आँखों पर भी बेवजह का हमारा स्ट्रेस पड़ता है और इससे दिक्कत हो जाती है। अब इस टाइम आपको करना क्या है, देखो छुट्टी आपकी अगर मान लेते हैं सैटरडे संडे छुट्टी है और आप लोग कहीं घूमने का प्लान नहीं है, आपका घर से बाहर जाने का प्लान नहीं है, ऑल्दो वैसे दिवाली की सफाई आ रही है, बट स्टिल मान लेते हैं कि आप लोगों ने सोचा चलो 3-4 एपिसोड निपटा लेती हूँ, आप लोगों ने कोई फेमस सीरीज़ उठाई, वेब सीरीज़ उठाई और आपने चला दी टीवी पे। अब आप लेट गए हैं सोफे पे, पहले टेढ़े लेटे फिर उल्टे लेटे फिर दूसरे करवट, और फिर अगर आप कंफर्टेबल हो चुके हैं तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि हर आधे घंटे में या फिर हर एपिसोड के बाद आपको उठकर स्ट्रेचिंग करनी है, आपको हाथ पैर स्ट्रेच करने हैं, आपको उठ के पानी पीने जाना है, पानी पहले से ही ला के मत रखना, पानी पीने जाना है, पानी पियेंगे तो फिर उसके बाद आपको वॉशरूम जाने की भी अर्ज होगी, तो आप वॉशरूम भी जाएंगे और आपका ऐसे ही में पोस्चर भी ठीक रहेगा। बस ये सब चीज़ें फॉलो करते रहिए और फिर बिंज वॉच करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने यूँ ही चलते रहेंगे।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बापा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

क्या आप या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो घूमने जरूर जाते हैं घर से दूर, बट वहां पर भी जाकर ना वो कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं निकलते, वो होटल के रूम में बैठे रहेंगे या फिर किसी चाय की दुकान पर जाके बैठ जाते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? देखो, घूमने गए थे, नहीं गए थे, अभी बीच में छुट्टी पड़ी थी, 2, 3 और 4 तारीख की छुट्टी पड़ी थी, उसी बीच बहुत सारे लोग घूमने गए। अब इसमें ना एक नया टर्म आ गया, उसे कहते हैं स्टिलकेशन। पहले वेकेशन था, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर स्टेकेशन आ गया जहाँ पर आप बैठ के काम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आपको मिला हुआ है। अब आ गया है स्टिलकेशन, ये ना एक ट्रैवल ट्रेंड है। इसमें क्या होएगा, जैसे आप किसी ना बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचते हैं, जैसे मान लेते नैनीताल, मसूरी, इसमें बहुत भीड़ थी इस बार, तो आप ऐसी जगह पर जाने से बचोगे और आप जाओगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको आराम करने या फिर सुकून से समय बिताने का आपको मन करेगा, आप ध्यान लगा सकते हो वहाँ पर, ऐसी जगह पर जाने का आपको मन करेगा, तो ऐसे कहते हैं स्टेकेशन। स्टेकेशन तो वही है ना जहाँ पर हम लोग बैठ के काम भी कर लेते हैं। खैर, बता दो आपको, स्टिलकेशन में एक दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर जाके बस पहाड़ी पे या फिर कॉटेज में या फिर झील के किनारे या फिर नदी के किनारे चुपचाप बैठ के बस टाइम पास हो रहा है। सोचो कितना सुकून मिलता है। और एक बार अगर आपने ज़िंदगी में ये कर लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप लोग फिर इससे वापस नहीं जा पाओगे। देयर इज़ नो गोइंग बैक। मतलब आप एक बार सुकून देख लोगे ना, वो मन का, अकेले जाओ कहीं दूर और वहाँ पर जाकर फ़ोन साइड में रख दो, पहाड़ों के बीच, बस पहाड़ों की वादियों को देखो, महसूस करो, हवा को महसूस करो, पानी को महसूस करो और बस बैठे रहो। कितना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा ना कि आप लोग ना मेरे को थैंक यू बोलोगे। और थैंक यू कैसे बोल सकते हो, नंबर है मेरा इसके लिए 9654896896, ये मेरा नंबर है। और आप लोगों ने कभी स्टिलकेशन नहीं किया तो करिएगा ज़रूर। और उसके अलावा अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है तो आप कहीं दूर पहाड़ों पर जाके स्टेकेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी वक्त बताएगा, करेंगे उसके बारे में बात, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी जी 9.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बार।
1: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

आसमान में धूल उड़ रही है। धुआं भी तो है बट धूल ज्यादा उड़ रही है क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है बहुत टाइम से, तो सड़क पर जो गंदगी थी वो अब आसमान में घूम रही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। आज जितनी गर्मी थी ना, कल इससे ज्यादा रहने वाली है ठंडी। देखो सुबह और शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलना तो शुरू हो चुकी है और ये मौसम मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बात करें पोल्यूशन की तो पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है कि 195 के आसपास है। और मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग ने एक और चीज़ चेक कर सकते हो, वो ये है कि अपने गूगल मैप्स पे जाइए। मैप्स पे जाके आप लोग ये देख सकते हो कि आपके एरिया में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। अभी मैं बता रहा हूँ पूरे फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा 195, जो कि मॉडरेट टू थोड़ा सा पुअर एयर क्वालिटी है ये। 190-195 बहुत हाँ ऐसे रहता है और कल भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। ह्यूमिडिटी अगर बात करें तो 50-60% ह्यूमिडिटी है। और अगर मैं अभी सभी जगहों की बात करूं जहां पर एयर क्वालिटी कैसी कैसी हो रखी है, तो अभी बड़खल लेक के आसपास आपको थोड़ी सी ठीक ठाक मिल जाएगी। इसके अलावा जो ग्रेटर फरीदाबाद है वहाँ पर भी आपको बिल्कुल एयर क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। देखो अंडर 50 तो नहीं मिलेगी बट हाँ 50-100 के बीच में मिल जाएगी। तो ये तो जी एयर क्वालिटी है फरीदाबाद की। और इसके अलावा अगर हम लोग आने वाले दिनों की बात करें तो कल थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक सा रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर 22 तक जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 तक रहेगा और आने वाले दिन अब ऐसे ही होने वाले हैं। तो कोई गर्मी बढ़ने के कोई चांस नहीं है। एसी अगर बंद कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बंद किया है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है और जब मौसम बदलेगा तो फिर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो भगवान ना करे कोई दिक्कत हो बट अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, हम लोग और भी ढेरों बातें करेंगे। और उसी बीच चला रहा हूँ आप लोग भूले ये गाना, आप सुन रहे हैं शो HR 896, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है, या फिर आपकी नॉन में कोई ऐसा इंसान है, या फिर आप खुद तो ऐसे इंसान नहीं हो जो हमेशा सोशल मीडिया में लगे रहता है कि भाई ये देख सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, भाई ये देख इधर क्या हो गया। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो आपको बेवजह बैक टू बैक मीम्स पे मीम्स, मीम्स पे मीम्स और मीम्स पे मीम्स ही भेजते रहते हैं। उनको नहीं है मतलब किसी दुनिया जहान से, उनको सिर्फ सोशल मीडिया चलाने से मतलब है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और वक्त हो चुका है क्या हाल है, मतलब आप लोगों की क्या हाल है। और जब ऐसे ही सवाल किसी सोशल मीडिया बफ से पूछो, बफ मींस जो हमेशा सोशल मीडिया पर रहता है, उससे पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा भाई ऑनलाइन लाइफ एकदम सेट है, रियल लाइफ का स्टेटस अभी लोडिंग में है। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन नहीं देखता ये इंसान, क्या देखता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। वैसे मैं तो नहीं हूँ ऐसा इंसान, क्योंकि मुझे भी आजकल ये लत लग चुकी है कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम देखता हूँ। खैर, इनसे पूछो क्या हाल है, तो खाना ठंडा हो जाए तो चलेगा इसके लिए, बट स्टोरी 24 घंटे लेट नहीं होनी चाहिए। स्टोरी आज की है तो आज ही डलेगी वो। और भाई हर जगह जाता है ये बंदा, फिर पहले लोकेशन टैग करता है, फिर लोकेशन एंजॉय करता है। मतलब मुझे तो लगता है कि फ़ोन साइड में रख के लोकेशन एंजॉय करनी चाहिए ना, क्योंकि अभी हाल ही में गया था घूमने के लिए तो पहले लोकेशन ही अपडेट कर रहा था ये। उसकी लाइफ में दो ही प्रॉब्लम्स है, फॉलोअर्स कम है और व्यूज़ एक्सपेक्टेड से भी कम है। कोई पूछे कैसा चल रहा है, बोलता है रील्स तो अच्छी चल रही हैं बट जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। और ये भाई जब भी किसी से मिलता है ना तो नाम बाद में पूछता है, इंस्टाग्राम आईडी पहले पूछ लेता है लोगों से। जिम में जाएगा तो फिर पता है ना आप लोगों को किससे इंस्टा आईडी पूछेगा। डेट पे भी फ़ोन टेबल पे नहीं रखता, कंटेंट के लिए परफेक्ट एंगल पे रखता है। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में भी होंगे जो हर वक्त कुछ खाने से पहले स्नैपचैट पे कुछ फ़ोटो अपलोड करेंगे, कुछ करने से पहले स्नैप बना लूँ ज़रा एक। ऐसे आपके भी दोस्त हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ हैं, क्योंकि मेरे भी हैं। और इनसे अभी पूछ लो क्या हाल है, ये बोलेंगे मतलब इन लोगों के लिए जो सीन वाला होता है ना, ब्लू टिक डबल टिक आ जाते हैं, जो भाई के लिए सीन सिर्फ मैसेज नहीं रिलेशनशिप का वर्डिक्ट भी होता है। और इसके अलावा रियल लाइफ में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता इस बंदे को, इसलिए खुद की पोस्ट पे कमेंट भी खुद ही कर देता है दूसरी आईडी से जाकर। तो आपके भी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे, तो उनका मजाक मत उड़ाइएगा, बट हाँ उनको बोलिए कि सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कर दें। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग बातें हम करते रहेंगे रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं शो HR 89.6।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोगों को पता है बॉलीवुड में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो या तो विदेश से लिए जाते हैं या फिर इंसान खुद बैठकर उसको लिखता है या फिर सोचा जाता है चलो दूसरी लैंग्वेज से कॉपी करके उसको बना दिया जाए अपनी लैंग्वेज में। और हम सबको मालूम है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा करते आए हैं बहुत सालों से। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूं गौरव आपके साथ। और अभी रिसेंटली आपने एक गाना सुना होगा, रिसेंट तो नहीं बोलूंगा, 3 साल पहले, मनिके, सुना था नहीं गाना मनिके मगहते, सुना था नहीं गाना, ये गाना योहानी सिंगर थी और ये गाना था फ्रॉम श्रीलंका। थैंक गॉड साल 2022 में मूवी आई थी उसमें इस गाने को ले लिया गया था और हिंदी में इसको डब किया गया था, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। खैर आप सभी को बता दूं मनिके तो 2022 में यूज़ किया गया, बगर श्रीलंका से और भी गाने लिए गए हैं और वो भी यही के है मनिके मगहते। इसका हिंदी वर्जन बनाया गया, इसका कवर बनाया गया, इसका दूसरा गाना बना दिया गया जिसका नाम मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ इसके अलावा आप सभी को बता दूं बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो साउथ इंडियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाए गए हैं, श्रीलंका से ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाए गए हैं, नेपाल से ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाए गए हैं, और अब तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के गाने भी इंडिया में यूज़ किए जाते हैं कोक स्टूडियो वाले। और इसके अलावा अगर गानों की हम लोग बात करें तो लिस्ट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। और उसी के जैसा एक और गाना है जो कि अभी मैं चलाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, जो आ तो बहुत सालों पहले गया था किसी लड़की की आवाज़ में, मगर इसको एक लड़के ने अपनी आवाज़ में उतारा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। गाने का नाम है बहारा।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी कि देश भर में या फिर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, फूड क्राइसिस आ सकते हैं, बट इसका असर इंडिया पे नहीं पड़ने वाला। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो बोल रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होगा, क्या हो सकता है? इंडिया के पास बहुत पैसा है, आपको लगता है कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, उसमें पूरा इंडिया तो नहीं बोलूँगा, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली NCR घूमने निकला पड़ा था, सबके पास पैसा है। फिर उसके अलावा आईफोन 18 जैसी लॉन्च हुआ तब इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी दुकानों पे, तो मतलब पैसा तो है ना। और तीसरी चीज़, अभी रिसेंटली गुरुग्राम में लॉन्च होते ही बिक गया पूरा का पूरा रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, लग्जरी रिटायरमेंट प्रोजेक्ट था सेक्टर 63 में, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया था द ओरेवा नाम से। इसमें 4.17 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है, 172 अपार्टमेंट्स लॉन्च होते ही बिक गए हैं, जिसकी टोटल लागत बताई जा रही है 1985 करोड़। सोचो 1985 करोड़ रुपीज़ में बिका, और अगर एक अपार्टमेंट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ का बिका है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं। इसमें ये सबसे छोटा वाला साइज़ वाला होगा, क्योंकि बड़े वाले साइज़ वाले अपार्टमेंट्स भी बहुत तेज़ी से बिके हैं, और ये DRF का प्रोजेक्ट है। तो इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद ना ऐसा लगता नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया का कुछ बिगाड़ पाएंगे। वैसे बहुत सारी और भी चीज़ें, लोगों की अपनी अपनी राय होती है इस पे, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए चला रहा हूँ ये गाना, सुनिए इस गाने को गौरव।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो
3: ladies and gentlemen, you are not

क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जहां पर आपके बॉस या फिर आपसे जो सीनियर है वो आपको बोल रहे हैं बेटा कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर ये बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी अब आपके हाथ से जा चुकी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ। और सपने में काफ़ी बार हमारी नौकरी चली जाती है, और उसके मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है कि नौकरी छूटना या फिर आप उसको निकाल दिया गया है। तो इसका सिंपल सा एक संकेत है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आने वाला है या फिर कोई परेशानी आने वाली है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको मिल सकता है, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, बट भगवान न करे ऐसा कभी हो। दूसरी चीज़, इसमें ना पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन ये है कि ऐसा सपना इस बात की ओर एक इशारा करता है कि आप अपनी जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है ना, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप चाहते हो कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए। तो रियलिटी में भी शायद ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बार ना साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे कि आपके मन में तनाव है, आप स्ट्रेस में हो और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें आपको नौकरी जाते हुए दिख रही है, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आज छूट चुकी है, आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया है। और हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, क्योंकि ऐसे सपने ये दिखाता है कि हमारे अंदर घबराहट है, खुद को लेकर इनसिक्योर हैं हम लोग, या फिर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो अपने सपने शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नंबर है मेरा 9654896896। आप सुन रहे रेडियो महारानी, मैं हूँ गौरव आपके साथ कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अक्सर हम लोगों के मन में एक सवाल आता है और वो सवाल ये आता है कि क्या हमें जिम सुबह जाना चाहिए या फिर हमें जिम शाम को जाना चाहिए, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। देखो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। और देखो, टाइमिंग कोई मैजिकल नहीं है। फैट लॉस और मसल गेन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जिम में अगर आप लोग जाते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? दिन की एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो जाती है, वर्कआउट मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्केड्यूल बिजी हो तो मॉर्निंग वर्कआउट इजीली लॉक हो जाता है क्योंकि हमें पूरे दिन भर तो काम करना है, सुबह सुबह वर्कआउट करके आ जाएंगे, मूड और एनर्जी को बूस्ट मिल सकता है, जिम कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड मिलता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है, लेस क्राउडेड होता है सुबह सुबह, और इसके अलावा वर्कआउट के बाद पूरे दिन एक्टिविटी मेंटेन करना ईजी हो जाता है। अच्छा, इसमें नुकसान ये भी हो सकता है कि बॉडी ना सुबह सुबह थोड़ी सी स्टिफ हो सकती है, इसीलिए प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एम्प्टी स्टमक तो हैवी वर्कआउट करना किसी भी मतलब सूरत में आइडियल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लोग शाम को जिम जाते हो तो शाम को जिम जाने के भी अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि बॉडी जनरली प्रॉपरली वार्म्ड अप होती है क्योंकि पूरे दिन भर काम किया है हम लोगों ने, दिन भर खाना खाया है, हाइड्रेशन मिलने की वजह से वर्कआउट भी अच्छा होता है, एनर्जी भी अच्छी हो सकती है, और काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इवनिंग में बेटर फील होती है कि नहीं? क्योंकि दिन भर खाना खाया आप लोगों ने, बॉडी में कार्ब्स लोड करे हैं, और अगर कार्ब्स लोड करें तो उसकी वजह से एनर्जी तो आएगी ही। और इसके अलावा अगर आप लोग काम करते हैं या फिर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसकी वजह से सारा स्ट्रेस भर जाता है, तो स्ट्रेस रिलीज करने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है शाम का वर्कआउट। अगर आप लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं या फिर इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टाइम शाम का ही है। और अगर हम लोग बात करें नुकसान की, तो शाम को जिम यूजुअली क्राउडेड होता है, तो बहुत लेट इंटेंस वर्कआउट करने से कुछ लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, तो बेस्ट टाइमिंग वही है जो आपको कंसिस्टेंट रख पाए। अगर मसल गेन प्रायोरिटी है तो टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सफिशिएंट प्रोटीन, कैलोरीज प्लस स्लीप प्लस कंसिस्टेंसी। और इसी की तरह और भी अपडेट्स और भी ज्ञान मैं देता रहूँगा आप सभी को रेडियो महारानी 89.6 पर। अभी फिलहाल सुनते रहिए इस गाने को और रहूँगा आप सभी को।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: फरीदाबाद शहर की सड़क हो या फिर अंदर गांव के साइड की सड़क हो या फिर किसी कॉलोनी के अंदर की सड़क हो, आजकल हर जगह एक चीज कॉमन है और वो है कचरा, कचरा और कचरा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे में कुछ लोग भंडारा करवाते हैं, कुछ लोग जागरण करवाएंगे, तो अगले दिन सुबह सुबह खाने का भी व्यवस्था करेंगे। तो इसी के दौरान क्या होता है, लोग पुण्य का काम तो करते हैं बट उसी के साथ साथ लोग अक्सर क्या करेंगे, बहुत सारी प्लास्टिक की प्लेट्स ले आएंगे, थर्मोकोल वाली प्लेट्स ले आएंगे, चम्मच और वो प्लास्टिक की ग्लास ले आएंगे, मगर फिर उसके बाद वहाँ पर डस्टबिन नहीं लाएंगे। एक नीला ड्रम तो रख सकते हो ना, बड़ा वाला, हाँ वही नीला ड्रम, उसको डस्टबिन बना कर रख लीजिए, उसमें सारा का सारा गंद कलेक्ट कर लीजिए और उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ कीजिए, जलाइएगा मत क्योंकि जलाने से और भी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फरीदाबाद में नोटिस करता हूँ अक्सर। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नोटिस करा होगा कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते शीशा डाउन किया और कुछ बाहर फेंक दिया। सी, दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ मदर अर्थ, दिस इज़ मदर नेचर, हमारी धरती हमारी माँ है, हम लोग अक्सर बोलते हैं धरती माता, भारत माता, तो क्या उसको गंदा करना सही है? नहीं ना। तो इसको सोचिए ज़रा इसके बारे में। और इसी के साथ साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास सफाई का ध्यान रखें, उसी के साथ साथ पूरा फरीदाबाद अपने आप साफ हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आपसे कल शाम 5 से 8। अब देखो मैं तो जा रहा हूँ मगर वापस आएगी गीत विदेश बाजियाँ, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने, और मैं कल शाम को आऊंगा 5 से 9। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
1: कर नौजला इन द चाल प्रूफ।

रात के 9 बज चुके हैं और अब शायद दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा वक्त अपने लिए है और मुझे लगता है रात का ये वक्त ना बातचीत के लिए सबसे सही होता है, क्योंकि दिन में हम कितने ही कामों में उलझे रहते हैं लेकिन रात होते होते दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर कुछ बातें अपने आप याद आने लगती हैं। शायद कोई पुरानी कन्वर्सेशन, शायद किसी का आज आया हुआ मैसेज या फिर किसी एक ऐसे इंसान की याद जिससे आज बात तो हुई लेकिन जितनी करनी थी उतनी नहीं हुई। और यहीं से शुरू होती है वो बातें जिनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है। सो हेलो एंड वेलकम टू इश्क बाजियां सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और अब वक्त है मेरे पहले सेगमेंट इश्क शायराना का, जहां हम सिर्फ शायरी सुनेंगे नहीं बल्कि शायरी के पीछे छुपी उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज प्यार करने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, रिश्तों के नाम बदल गए हैं, लेकिन किसी के एक मैसेज से चेहरे पर स्माइल आ जाना, किसी की आवाज सुनकर मूड थोड़ा बेहतर हो जाना और किसी के साथ बिना किसी खास टॉपिक के भी घंटों तक बात करते रहना, ये चीजें शायद आज भी वैसी ही हैं। तो आज की रात थोड़ी बात होगी आज के रिश्तों की, आज के जनरेशन के प्यार की और उन छोटी चीजों की जिन्हें हम अक्सर कैजुअली ले लेते हैं। और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ और लौटेंगे इस गाने के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
0: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट

0: वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और एक बात अक्सर आपने नोटिस की होगी कि हम बात तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते। हमारी जनरेशन के पास कम्युनिकेशन की कमी बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, हम किसी को भी कभी भी रीच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बात बहुत करते हैं लेकिन कहते बहुत कम है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। खाना खाया? हाँ। कैसा था दिन? ठीक था। और कॉन्वर्सेशन खत्म। लेकिन उसी इंसान से अगर एक रात अचानक बात निकल जाए तो फिर वो दो घंटे पता ही नहीं लगता, क्योंकि शायद हमें हर रोज बात करने वाला इंसान नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जिसके साथ बात करना मीनिंगफुल लगे। और आजकल रिलेशनशिप्स में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही लगती है, हम सब कनेक्शंस चाहते हैं लेकिन वल्नरेबिलिटी से थोड़ा सा डरते हैं। हम किसी को अपनी फोटो भेज सकते हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बोलने में हेजिटेशन फील होती है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि शायद आज के वक्त में फीलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फीलिंग्स दिखाने से। हम आई मिस यू कहने की जगह एक रील भेज देते हैं, टेक केयर की जगह स्टोरी पर रिएक्ट कर देते हैं, और मुझे तुमसे बात करनी है की जगह लिख देते हैं फ्री हो। लेकिन प्यार की भाषा शायद अब भी वही है, बस हमारे तरीके थोड़े से बदल गए हैं। तो इस बदलती हुई भाषा को आज हम समझेंगे इस गाने के थ्रू। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और एक कहते हैं ना कि किसी को पसंद करना और किसी को चुनना, आपने कभी नोटिस किया है आजकल किसी को पसंद करना कितना आसान है? किसी की प्रोफाइल अच्छी लग जाती है, उसकी बातें अच्छी लग जाती हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है और बस थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन किसी को चुनना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पसंद तो आपको बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन जब बात किसी एक इंसान की आती है ना, तो फिर आपको सिर्फ उसकी अच्छी बातें नहीं दिखती, उसका बिजी होना भी दिखता है, उसकी छोटी छोटी आदतें भी दिखती हैं, उसके मूड स्विंग्स भी दिखते हैं, उसकी अपनी दुनिया भी दिखती है। और फिर भी आप कहते हैं हाँ इसी इंसान के साथ मुझे रहना है। शायद यही फर्क है अट्रैक्शन और लव में। और इसी बात पर जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या खूबसूरत बात कही है ना, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, इतने चेहरे हैं, इतनी कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन दिमाग बार बार जाकर एक ही इंसान पर रुकता है। और आज के वक्त के लिए शायद ये फीलिंग और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम किसी से बात बंद कर दें तो कोई दूसरा मिल सकता है, किसी की प्रोफाइल पसंद नहीं आई स्वाइप कर सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा दूसरी कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक इंसान का कैसे हो बाकियों के इस मैसेज से ज्यादा अच्छा लगने लगे, तो शायद मामला सिर्फ पसंद का नहीं है। कुछ लोग ऑप्शन नहीं होते, कुछ लोग प्रेफरेंस बन जाते हैं। मुझे लगता है प्यार की खूबसूरती भी यही है कि हजारों लोगों के बीच भी आपके दिल को एक आवाज थोड़ी ज्यादा अपनी लगने लगे। तो आज की रात अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक शख्स है जिसका नाम आते ही आपकी अटेंशन अपने आप उधर चली जाती है, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शायद शायर ने आपकी सिचुएशन बहुत पहले लिख दी है। और अब उसी एहसास के साथ एक और खूबसूरत गाना, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज है इश्क में जगह बनाना। और आज के इश्क शायराना में जाते जाते एक बात, हम प्यार को अक्सर बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स में ढूंढते हैं, फ्लावर्स, डेट्स, सरप्राइजेस, लॉन्ग ड्राइव्स, लेकिन कभी कभी किसी इंसान का आपकी जिंदगी में होना इससे कहीं ज्यादा सिंपल होता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपके हर डिसीजन में अपना ओपिनियन नहीं थोपता, आपके हर खाली वक्त पर अपना हक नहीं जताता, बस आपकी जिंदगी में अपनी एक छोटी सी जगह बना लेता है। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा, ये इंसान अब मेरी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सुबह कुछ हुआ तो उसे बताना है, कुछ फनी मिला तो उसे भेजना है, कोई अच्छी खबर मिली तो सबसे पहले उसी को बताना है। और फिर एक दिन रियलाइज होता है, प्यार शायद वो नहीं था जब पहली बार बटरफ्लाईज हुई थी, प्यार तो शायद वो था जब उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में नेचुरल हो गई थी। आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए किसी ग्रैंड मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जॉनेलियस आपका एक और शेर है, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें पूरा रिश्ता छुपा हुआ है। एक तरफ रूठने की आजादी और दूसरी तरफ मनाए जाने का भरोसा। और शायद आज के वक्त में हमें एक ऐसा ही रिश्ता चाहिए जहां आपको हर वक्त परफेक्ट बनने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़ा रूठ सकें, आप थोड़ा नखरा कर सकें, कभी अपने मन की बात ना कह सकें, और शायद सामने वाला फिर भी समझने की कोशिश करे। क्योंकि हेल्दी लव शायद वो नहीं जहां कभी कोई नाराज ही ना हो, हेल्दी लव शायद वो है जहां नाराजगी के बाद भी दोनों को पता हो कि हम इस बात को ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है यही भरोसा भी किसी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आपको हर वक्त अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आप थोड़ा सिली हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा चाइल्डिश हो सकते हैं, आपको सिर्फ प्यार नहीं मिला है, आपको शायद एक ऐसी जगह मिली है जहां आप खुद हो सकते हैं। और शायद इश्क की इससे खूबसूरत डेफिनेशन और कोई नहीं। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये था आज का इश्क शायराना। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात अभी बाकी है तो इश्क की बातें भी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

कभी-कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेज।

जस्ट थे बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो,

विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या बहुत दुर्लभ है। सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, हे शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है। इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे। इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है,
श्री राधा जुग चरण निवास।